0: सफाई आइलेट सुंदर नूंचा रेडियो साइन 89.8 MHz।
1: साहिनो समय सूचक अहिले बिहानको 9 बज्यो। It's 9 a.m.

0: रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज तपाईं हाम्रो अटुट साइनो
1: सब्सक्राइब नाउ एन्ड प्रेस द बेल आइकन नेभर मिस एन अपडेट फ्रम टिप्स अफिसियल